0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजी की हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।

0: फोरम के दौरान ताजिक जनता के प्राचीन पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसमें चकनदोजी यानी पारंपरिक कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाने के कला, जरदोजी लकड़ी पर नक्काशी तथा अन्य पारंपरिक हस्तशिल्पों का प्रदर्शन किया गया। अतिथियों और प्रतिभागियों को ताजिक कारीगरों की हस्तनिर्मित कलाकृतियों को नजदीक से देखने और उनके विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मिला है। फोरम के अंतर्गत 2B2 प्रारूप में व्यावसायिक बैठकें भी आयोजित की गई, जो नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होंगे। ऐसे संवादों में कंपनियों के प्रतिनिधियों को अपनी परियोजनाओं का परिचय देने तथा सहयोग के नए अवसरों की पहचान करने का अवसर मिलता है। फोरम में भाग लेने वाले एक अतिथि ने, जिन्होंने स्वयं को रूसी संघ से आया हुआ बताया, अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किया।
1: Представляю российскую делегацию, компанию Mirus Travel и Bricks Travel.
0: Мы русский предпринимандал Татха Mirus Travel और Bricks Travel компанию का प्रतिनिधित्व करता हूं। सबसे पहले इस क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे विचार से ताजिकिस्तान एक अत्यंत प्रामाणिक और सुंदर देश है, जहां अद्भुत प्रकृति, सौंदर्य, विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उदार हृदय वाले लोग और समृद्ध संस्कृति मौजूद है। विशेष से मुझे यहाँ राष्ट्रीय मूल्यों और परंपराओं के संरक्षण ने प्रभावित किया, साथ ही यहाँ का पारंपरिक भोजन भी अत्यंत आकर्षक की। यही वे सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो पहले ही नजर में ध्यान आकर्षित करती है। इसके बाद जो कुछ भी दिखाई देता है वो इन्हीं लोगों की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का परिणाम है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र न केवल पर्यटन के लिए बल्कि रहने के लिए भी अत्यंत रोचक और आकर्षक है। इसमें अपार संभावनाएं हैं जो देशी और विदेशी पर्यटकों दोनों को आकर्षित कर सकती हैं। फोरम के दौरान ये उल्लेख किया गया कि पर्यटन का विकास क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के साथ होटलों, परिवहन सेवाओं, हस्तशिल्प उत्पादों तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की मांग भी बढ़ती है। इस फोरम में 400 से अधिक अतिथियों ने भाग लिया। खतलों, सभ्यताओं और यात्राओं की धरती अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन फोरम और प्रदर्शनी का आयोजन क्षेत्र में पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सुदृढ़ कदम साबित हो सकता है। ये आयोजन न केवल खतलों प्रांत के संभावनाओं को बल्कि पूरी देश के पर्यटन सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमताओं को भी विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे रिपोर्ट खतरों, सभ्यता और यात्राओं की धरती के फोरम के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।

ऊर्जा सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण खासा 1000 परियोजना है। ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को ऊर्जा के माध्यम से जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक और रणनीतिक परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य तर्किस्तान और किर्गिजिस्तान के अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा को अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान तक पहुँचाना है। खासा 1000 परियोजना के अंतर्गत तर्किस्तान गर्मियों के मौसम में जब उसके जल विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन आर्थिक होता है अपनी अतिरिक्त बिजली पाकिस्तान को निर्यात कर सकेगा। इससे तर्किस्तान को अपनी ऊर्जा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और निर्यात आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वहीं पाकिस्तान के स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल और अपेक्षाकृत कम लागत वाली बिजली प्राप्त होगी जिससे उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगा। ये उल्लेखनीय है कि इन दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापारिक और निवेश संबंधी मंचों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तर्किस्तान गणराज्य के ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री दलेर जुमा का कहना है कि ऐसे मंचों का आयोग दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने में विशेष महत्वपूर्ण रखता है। व्यापार एवं निवेश मंचों संयुक्त कार्य समूहों के नियमित बैठकों का आयोजन सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना तथा तर्किस्तान पाकिस्तान संयुक्त निवेश परिषद की गतिविधियों का विकास दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारी संबंधों को आगे बढ़ाने में विशेष महत्व रखता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंतर सरकारी संयुक्त आयोग के कार्यों के परिणाम तथा उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन से दक्षिण सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत होगी जो तर्किस्तान और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के विस्तार तथा उनकी रणनीतिक साझेदारी को और आर्थिक मजबूत बनाएगी। आधिकारिक अंकारों के अनुसार वर्ष 2025 में तर्किस्तान गणराज्य और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के बीच विदेशी व्यापार का मूल्य 48 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा। यद्यपि पिछले वर्षों की तुलना में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है फिर भी दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के विकास की संभावनाएं व्यापक है। वर्ष 2025 में तर्किस्तान से पाकिस्तान को लगभग 12 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के सामानों का निर्यात किया गया जबकि आयात का स्तर भी उल्लेखनीय रहा। इसके बावजूद दोनों देशों की आर्थिक क्षमता और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए वर्तमान व्यापारिक अंकड़े अभी भी उपलब्ध अवसरों और संभावनाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए आर्थिक और व्यापारी सहयोग को और सुदृढ़ करना द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिए नए मार्गों की खोज करना निर्यात एवं आयात की वस्तुओं में विविधता लाना तथा दोनों देशों के व्यापारिक और निवेश समुदायों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में उद्योग ऊर्जा परिवहन लॉजिस्टिक्स कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार तर्किस्तान और पाकिस्तान के आर्थिक संबंधों के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

या दिलाते कि आप अभी रेडियो आवाजी ताजी को सुन रहे हैं। कार्यक्रम की इस बात में हम एक गाने के बारे में बताते हैं जो हमारे राष्ट्र के इतिहास को दर्शाता है। वो कहता है, मैं आर्यन हूँ।

गाना मैं आर्यन हूँ लोगों के प्रिय गानों में से एक है कि रेडियो और टेलीविजन द्वारा नियमित रूप से दिखाई जाती है। इस गाने को देश के लोग मरियम जलाली ईरानी कलाकार से सुनकर परिचित हुए। इस गाने की पैदाइश कैसी हुई है आइए जानते हैं।

जैसे हमने बताया कविता मैं आर्यन हूँ मसूरी सिपंद द्वारा सन 2002 ताजिकिस्तान में लिखा हुआ। इसके बाद इस कविता को अमेरिका लेकर उसे फारसी भाषी कलाकार मरियम जलाली और उसके पति को गाने के लिए पेश किया। श्रीमती मरियम जलाली का जन्म सन 1948 को ईरान में हुआ। मरियम जलाली अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाती है पर ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद इस देश में कैलिफोर्निया में रहती है। मरियम जलाली ने सन 1995 कला कार्य शुरू करके पहले बार एक फिल्म है जिसका निदेशक बहमान जरीनपुर था भाग लिया। उसके बाद उसने बहुत दूसरे फिल्मों में भूमिका निभाई। मरियम जलाली के व्यवसायी मुनीम था और इस क्षेत्र में उसने विभिन्न कार्यालयों और कंपनियों में काम किया है, पर उसकी आवाज भी अच्छी थी और उसने कई गाने गा के दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया, विशेष रूप से दरो नफस की भी मीराम दरो अर्जुए तो बोशम, नाजुक दिल, बारिश और मैं आर्यन हूँ गानों द्वारा बहुत लोकप्रिय हुई है।

प्यारे सुनने वालों, ये थी जानकारी एक गाने के बारे में। हमें आशा है कि आप इस गाने में आर्यन हो की उत्पत्ति और इतिहास से परिचित हुए। आप खुजा सई मिर्जोवाली द्वारा गाए गए इस गाने को सुनकर आनंद लेते हैं।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजी की हिंदी भाग की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

Izgan teki mukia khabari Tajikistan ke pratinidhi madalne Saint Petersburg santarashri artik manch me hisalya. Cyprus ke videsh mantri Konstantinos Kombonsne Ismail Samaniki pratima ke adhar par pushpanjali arpitki. Antarashi sangatanon ke manchu par Tajikistan aur Australia ke sahyog par vichar vimarsh kiya gaya. Ye aur dusre khabarein hamare is ghante mein. سے 6 جون 2026 تک روس کے سینٹ پیٹربرگ شہر میں سینٹ پیٹربرگ انتراشری آرتھک مانچ آیوجت کیا گیا ہے اس کاریکرم میں تجکستان گنرجا کی پرتنیدھی مندل نے آرتھک وکاس ایوان ویاپار منتری عبدالرحمن عبدالرحمن زودہ کے نیتریتو میں ادھیکاری ادگھاٹن سماروہ وبھن سہایا کاریکرموں تھا انتراشری وستو ایوان اتپاد پردرشنی میں بھاگ لیا یہ جانکاری تجکستان گنرجا کے आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय ने दी है इस आयोजन में सरकारी संस्थाओं निवेशकों युवाओं खिलाड़ियों वित्तीय संगठनों के प्रतिनिधियों आदमितियों उत्पादों तथा वैज्ञानिकों सहित विश्व के 130 देशों से 20,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया फोरम के दौरान तजिकिस्तान गणराज्य के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री अब्दुर्रहमान जोदा ने रूस के आर्थिक विकास मंत्री मक्सिम रेशेदनिकोव के साथ मुलाकात की मुलाकात में दोनों पक्षों ने उन निर्देशों और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जो रूस के राष्ट्रपति के तजिकिस्तान की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित की गई थी इसके साथ ही बैठक में तजिकिस्तान से रूस को ताजे फल सूखे मेवे और सब्जियां विशेष रूप से अंगूर के निर्यात को बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई ये भी रेखांकित किया गया कि प्रस्तावित पहलों के कार्यान्वयन से उत्पादों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने उनकी गुणवत्ता में सुधार करने तथा तजिकिस्तान गणराज्य के निर्यात उत्पादों के श्रृंखला का विस्तार करने में सहायता मिलेगी आज साइप्रस गणराज्य के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस ने तजिकिस्तान गणराज्य के अधिकारी की यात्रा के दौरान दुशांबे शहर के दोस्ती चौक का दौरा किया और ताजिक राज्य के संस्थापक इस्माइल सामानी के प्रतिमा के आधार पर पुष्पांजलि अर्पित की पुष्पांजलि अर्पित समारोह के दौरान कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस के सात अधिकारी प्रतिनिधि भी उपस्थित थे इस यात्रा के दौरान तजिकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री और साइप्रस गणराज्य के विदेश मंत्री के बीच एक बैठक आयोजित की गई है इस बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति और अनेक विकास की संभावनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की اسرائیل کی راجدھانی وینا میں تجکستان گنرجا کے اسدھارن تجکستان گنرجا کے آسٹریا میں اسدھارن ایوان پورننکاری راجدوت منوچیر زوبیر اور آسٹریلیا گنرجا کے یوروپی ایوان انتراشی معاملوں کے سانگی منترالے کی راجنیتی وبھا کے ندیشک تھوماس میولمان کے بیچ بیٹھک آیوجت ہوئی تجکستان گنرجا کے دوتاوس کے انوسار بیٹھک کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ بہو آیامی تتھا پرسپرک روپ سے لبھکاری سمبندھوں کے وکاس کی سمبھاوناؤں پر چرچا کی گئی ساتھ ہی انتراشٹریہ سنگٹھنوں کے ڈھانچے کے انترگت سہیوگ کے وبھن پہلوؤں پر بھی وچار ومرش کیا گیا تجکستان گنرجا کے مجلسی نمائندگان مجلسی اولی کے ادیاش غیاث الدین اشورزودہ نے وشبین کے پرتنی مندال کے ساتھ بیٹھک کی اس سمبند میں مجلسی نمائندگان مجلس اولی نے جانکاری دی بیٹھک کے دوران یہ کہا گیا کہ سروجنک ویائے اور وتی جواب دہی مولیانکن رپورٹ تجکستان کے لیے کیول ایک انتراشٹری مولیانکن اپکارن نہیں ہے بلکہ سروجنک وت پربندھان کی واستوک ستھتی کا وشلیشن کرنے
बदियों का आकलन करने और आगे के सुधारों की दिशा निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ये भी उल्लेख किया गया कि पूर्ववर्ती यानी PEFA आकलनों के परिणाम बजट योजना कोषागार प्रणाली के सुधार सरकारी वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने सार्वजनिक लेखा परीक्षा के विकास तथा बजटीय पारदर्शिता बढ़ाने जैसे व्यापक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण आधार बनी है। इस वर्ष का PEFA मूल्यांकन विशेष महत्व रखता है क्योंकि पहली बार इसमें कई नए और महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, जेंडर आधारित बजट निर्माण तथा स्थानीय स्तर के मूल्यांकन जैसे विषय शामिल है। ये भी रेखांकित किया गया कि तजिकिस्तान की संसद देश के सर्वोच्च प्रतिनिधिक और विधायी संस्थान के रूप में सार्वजनिक धन के उपयोग पर संसदीय निगरानी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि संसद में प्रतिवर्ष केवल राज्य बजट संबंधी कानून के मसौदे पर ही विचार नहीं किया जाता, बल्कि राजकोषीय रणनीति, मध्यम अवधि के आर्थिक विकास की संभावनाओं, सरकारी व्यय की प्रभावशीलता तथा सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामों का भी गहन विश्लेषण किया जाता है। प्यारे सुनने वालों, ये थी समय की ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।

0: نمسی پریاش رو تاو ممینابات زلی که چیل دخترون گند میان تراشی پریاتان فورام اور پردرشانی خطلون سویتاون اور یتراون که دهرتی کا آیو جان کیا گیا اور اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک ریپورٹ پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیم इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में दुनिया के 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें उज्बेकिस्तान किर्गिजिस्तान कजाकिस्तान रूस चीन जनवादी गणराज्य और तुर्किया शामिल है। इसके अलावा पर्यटन कंपनियों के प्रतिनिधि निवेशक राजनीतिक मिशनों के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा विकास सहयोगी भी इस आयोजन में उपस्थित रहे। ये फोरम पर्यटन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने निवेश आकर्षित करने तथा लोंग क्षेत्र के समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन क्षमता को वैश्विक स्तर पर परिचित कराने के उद्देश्य में आयोजित किया गया। फोरम के दौरान पर्यटन क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों सहयोग की संभावनाओं तथा नए निवेश अवसरों पर प्रतिभागियों द्वारा व्यापक चर्चा की गई। फोरम का एक प्रमुख भाग अंतर्राष्ट्रीय पैनल सत्र थे जिनमें विशेषज्ञों और जानकारों ने पर्यटन उद्योग से संबंधित समसामयिक चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श किया। चर्चाओं का मुख्य विषय डिजिटल पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रहा जिसके अंतर्गत आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पर्यटन सेवाओं को अधिक प्रभावी सुलभ और आकर्षक बनाने के उपायों पर चर्चा की। खतलोन क्षेत्र के युवा एवं खेल विभाग के प्रमुख रमाजोन नसरुद्दीन जोदा ने इस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किया है।
1: چورابینی که بخاطر تبادل تجربه
0: یه آیوجان جیسی انباون که آدم پردام پر تکون کو اکرشید کرنی تتان تراشی سنگتانون و سخانی پرشاستان که بیش سیو کو صدریر بنانی که اودیشیا سی آیوجید کیا گیا تھا ایک بار پھر یہ سید کرتا ہے کہ آج خطلونگ شیطر می پریاتن وکاس کے لیے زیاپا کافسار اپلاکی سب سے متوپورم بات یہ کہ پریاتن شیطر کی ادھار بہت سنرچنا کو مضبوط کیا گیا ہے پیشش رو سے خوطالون، دشرام، خالون اور آنیا پریاتن سویدہوں میں انوکول پرستیتیاں وکاسیت کی گئی ہے جس سے پریاتکوں کے لیے آرام دایک وطاوران سنشچیت ہوا ہے اسی پرکار کے سویدہائین اور انوکول پرستیتیاں یہ افسار پردان کرتی ہے کہ پریاتن سے سمبندیت ایسی انتراشری ستر کے فورام اور کریکرام سبھالتا پورواک آیوجیت کیے جائیں تتاکشی ترکی پریاتن کشمتا کو ویشویک ستر پر اور ادھی प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। फोरम के दौरान ताजिक जनता के प्राचीन पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसमें चकंदोजी यानी पारंपरिक कढ़ाई मिट्टी के बर्तन बनाने के कला जरदोजी लकड़ी पर नक्काशी तथा अन्य पारंपरिक हस्तशिल्पों का प्रदर्शन किया गया। अतिथियों और प्रतिभागियों को ताजिक कारीगरों की हस्तनिर्मित कलाकृतियों को नजदीक से देखने और उनके विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मिला है। फोरम के अंतर्गत 2B2 प्रारूप में व्यावसायिक बैठकें भी आयोजित की गई जो नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होंगे। ऐसे संवादों में कंपनियों के प्रतिनिधियों को अपनी परियोजनाओं का परिचय देने तथा सहयोग के नए अवसरों की पहचान करने का अवसर मिलता है। फोरम में भाग लेने वाले एक अतिथि ने जिन्होंने स्वयं को रूसी संघ से आया हुआ बताया अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किया। मैं रूसी प्रतिनिधि मंडल तथा माइरेस ट्रेवल और ब्रिक्स ट्रेवल कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। सबसे पहले इस क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे विचार से तजिकिस्तान एक अत्यंत प्रामाणिक और सुंदर देश है जहां अद्भुत प्रकृति सौंदर्य विशाल पर्वतीय क्षेत्र उदार हृदय वाले लोग और समृद्ध संस्कृति मौजूद है। विशेष रूप से मुझे यहाँ राष्ट्रीय मूल्यों और परंपराओं के संरक्षण ने प्रभावित किया। साथ ही यहाँ का पारंपरिक भोजन भी अत्यंत आकर्षक है। यही वे सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो पहले ही नजर में ध्यान आकर्षित करती है। इसके बाद जो कुछ भी दिखाई देता है वो इन्हीं लोगों की परंपराओं और संस्कृति विरासत का परिणाम है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र न केवल पर्यटन के लिए बल्कि रहने के लिए भी अत्यंत रोचक और आकर्षक है। इसमें अपार संभावनाएं हैं जो देशी और विदेशी पर्यटकों दोनों को आकर्षित कर सकती है।

सुदरीर कदम साबित हो सकता है। ये आयोजन न केवल खतलों प्रांत के संभावनाओं को बल्कि पूरी देश के पर्यटन सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमताओं को भी विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे रिपोर्ट खतरों, सभ्यता और यात्राओं की धरती के फोरम के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।

0: और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक रहे हैं। तजिकिस्तान और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक सहयोग संगठन तथा शंघाई सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों पर भी मिलकर कार्य करते हैं और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा है। तजिकिस्तान विशाल जल विद्युत संसाधनों से समृद्ध देश है और जल विद्युत उत्पादन की क्षमता के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक विकास के कारण ऊर्जा की बढ़ती मांग का सामना करा है। यही कारण है कि ऊर्जा क्षेत्र दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रमुख आधार बन गया है। तजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के विकास के संबंध में तजिकिस्तान राज्य के ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री दलेर जुमान ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किया।
1: مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های متقابلاً سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه احترام
0: تاجیکستان گنراجه و اسلامی پاکستان گنراجه که بیش پرسپاریک روپ سے لبکاری سامبان سامان وشواس و راپسی سماش کے آدھار پر نیرانتار مضبوط ہوتے گئی ہے تتھا آج اوچستار کے وکاس تک پہن چکے ہیں پاکستان مادیا اور دکشن ایشیا کشیتر میں تاجیکستان کا ایک متوپور रणनीति सचेदार है। दोनों देश राजनीतिक आर्थिक व्यापारिक ऊर्जा परिवहन निवेश विज्ञान शिक्षा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तजिकिस्तान गणराज्य सभी पारस्परिक हितों वाले क्षेत्रों में इन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ एवं विस्तारित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। ये उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय मुलाकातों ने द्विपक्षीय संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी संदर्भ में दिसंबर 2022 में तजिकिस्तान के राष्ट्रपति मामाखिम अली रहमों की पाकिस्तान के आधिकारिक यात्रा तथा जून 2024 और मई 2025 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मामाखिम शहबाज शरीफ की तजिकिस्तान यात्राओं को अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं के रूप में देखा जाता है। इस यात्राओं ने द्विपक्षीय सहयोग को नई गति प्रदान की तथा संयुक्त पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार। इन उच्च स्तरीय बैठकों और वार्ताओं के परिणाम स्वरूप ऊर्जा परिवहन और संचार व्यापार तथा निवेश जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक विस्तार मिला है। इस दौरान तजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग निवेश उद्योग ऊर्जा परिवहन तथा अन्य क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर विशेष बल दिया गया। ये भी रेखांकित किया गया कि तजिकिस्तान और पाकिस्तान के पास अर्थव्यवस्था व्यापार निवेश उद्योग ऊर्जा परिवहन तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को अधिक मजबूत करने की व्यापक संभावनाएं मौजूद है। इन अवसरों का प्रभावी उपयोग संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन निवेश आकर्षित करने तथा मित्रपूर्ण और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जा सकता है जो दोनों देशों के हितों की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

ऊर्जा सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण खासा 1000 परियोजना है। ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को ऊर्जा के माध्यम से जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक और रणनीतिक परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य तजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान के अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा को अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान तक पहुँचाना है। खासा 1000 परियोजना के अंतर्गत तजिकिस्तान गर्मियों के मौसम में जब उसके जल विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन आर्थिक होता है अपनी अतिरिक्त बिजली पाकिस्तान को निर्यात कर सकेगा। इससे तजिकिस्तान को अपनी ऊर्जा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और निर्यात आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वहीं पाकिस्तान के स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल और अपेक्षाकृत कम लागत वाली बिजली प्राप्त होगी जिससे उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगा। ये उल्लेखनीय है कि इन दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापारिक और निवेश संबंधी मंचों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तजिकिस्तान गणराज्य की ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री दलेर जुमा का कहना है कि ऐसे मंचों का आयोग दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने में विशेष महत्वपूर्ण रखता है। व्यापार एवं निवेश मंचों संयुक्त कार्य समूहों के नियमित बैठकों का आयोजन सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना तथा तजिकिस्तान पाकिस्तान संयुक्त निवेश परिषद की गतिविधियों का विकास दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारी संबंधों को आगे बढ़ाने में विशेष महत्व रखता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंतर सरकारी संयुक्त आयोग के कार्यों के परिणाम तथा उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन से दक्षिण सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत होगी जो तजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के विस्तार तथा उनकी रणनीतिक साझेदारी को और आर्थिक मजबूत बनाएगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में तजिकिस्तान गणराज्य और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के बीच विदेशी व्यापार का मूल्य 48 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा। यद्यपि पिछले वर्षों की तुलना में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है फिर भी दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के विकास की संभावनाएं व्यापक है। वर्ष 2025 में तजिकिस्तान से पाकिस्तान को लगभग 12 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के सामानों का निर्यात किया गया जबकि आयात का स्तर भी उल्लेखनीय रहा। इसके बावजूद दोनों देशों की आर्थिक क्षमता और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए वर्तमान व्यापारिक अंकड़े अभी भी उपलब्ध अवसरों और संभावनाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को और सुदृढ़ करना द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिए नए मार्गों की खोज करना निर्यात एवं आयात की वस्तुओं में विविधता लाना तथा दोनों देशों के व्यापारिक और निवेश समुदायों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में उद्योग ऊर्जा परिवहन लॉजिस्टिक्स कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार तजिकिस्तान और पाकिस्तान के आर्थिक संबंधों के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

या दिलाते कि आप अभी रेडियो आवाजी ताजी को सुन रहे हैं। कार्यक्रम की इस बात में हम एक गाने के बारे में बताते हैं जो हमारे राष्ट्र के इतिहास को दर्शाता है। वो कहता है, मैं आर्यन हूँ।

गाना मैं आर्यन हूँ लोगों के प्रिय गानों में से एक है कि रेडियो और टेलीविजन द्वारा नियमित रूप से दिखाई जाती है। इस गाने को देश के लोग मरियम जलाली ईरानी कलाकार से सुनकर परिचित हुए। इस गाने की पैदाइश कैसी हुई है आइए जानते हैं।

Masudi sifantka janam san 1943 me Khurasan ke paschim Serbisha zile me hua. Uska pita sainik tha aur sifant saab ne bhi school ke baad police vidyalay me padhkar Iran police ke vibhin paas me seva ki. San 1980 usne America jaake palayan kiya. सिपान बचपन से शायरी से रुचि रखता था। उसकी शायरी ईरान के समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। अमेरिका में भी उसने अनुसंधान और अध्ययन को नहीं छोड़कर विभिन्न शायरी पेश की है। साथ ही वो अमेरिका के फारसी भाषी रेडियो और टेलीविजन में सक्रिय रूप से काम करके विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता था। मैं आर्यन हूँ कविता को लिखने के बारे में मसूदी सिपान ने एक ताजिक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कहा, मैंने मैं आर्यन हूँ की कविता को ताजिकिस्तान में लिखा और इस तरक्षण के एक हॉल में ताजिकिस्तान की सरकार के लिए प्रस्तुत किया। मैं ताजिकिस्तान को फारसी भाषी देशों के दिल और हृदय मानता हूँ। ताजिकिस्तान का भूमि अगर छोटा हो पर उसका इतिहास और राष्ट्र बहुत बड़ा है। उसी इंटरव्यू में उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि साल के 6 महीने मैं ताजिकिस्तान में रहूं और कई विद्यालयों और रेडियो या टेलीविजन चैनल में काम कर सकूं। साथ ही आशा है कि ताजिकिस्तान के अभियायत्र मुझे मिलेगा। از اوج قلب

जैसे हमने बताया कविता मैं आर्यन हूँ मसूरी सिपान द्वारा सन 2002 ताजिकिस्तान में लिखा हुआ। इसके बाद इस कविता को अमेरिका लेकर उसे फारसी भाषी कलाकार मरियम जलाली और उसके पति को गाने के लिए पेश किया। श्रीमती मरियम जलाली का जन्म सन 1948 को ईरान में हुआ। मरियम जलाली अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाती है पर ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद इस देश में कैलिफोर्निया में रहती है। मरियम जलाली ने सन 1995 कला कार्य शुरू करके पहले बार एक फिल्म है जिसका निदेशक बहमानजरीनपुर था भाग लिया। उसके बाद उसने बहुत दूसरे फिल्मों में भूमिका निभाई। मरियम जलाली के व्यवसायी मुनीम था और इस क्षेत्र में उसने विभिन्न कार्यालयों और कंपनियों में काम किया है, पर उसकी आवाज भी अच्छी थी और उसने कई गाने गा के दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया, विशेष रूप से दरो नफस की भी मीराम दरो अर्जुए तो बोशम, नाजुक दिल, बारिश और मैं आर्यन हूँ गानों द्वारा बहुत लोकप्रिय हुई है।

प्यारे सुनने वालों, ये थी जानकारी एक गाने के बारे में। हमें आशा है कि आप इस गाने में आर्यन हो की उत्पत्ति और इतिहास से परिचित हुए। आप खुजा सई मिर्जोवाली द्वारा गाए गए इस गाने को सुनकर आनंद लेते हैं।